0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: Indian Institute of Technology, Bombay, has invited online applications for several positions. The vacancies include Technical Officer, Scale 1, Sports Officer, Scale 1, Student Counselor on Contract, Technical Superintendent, Junior Staff Nurse, Library Information Superintendent, Junior Mechanic and Junior Trained Graduate Teacher, Hindi and Music. The post carry ranging from pay level 3 to pay level 10, depending on the position. And the number of vacancies varies by post and includes reservations for SC, ST, OBC, NCL, EWS and UR categories. The last date for submission of online applications is 4th September 2026. Candidates should check the prescribed educational qualifications, experience, age limits and other eligibility conditions before applying. Detailed information and the online applications are available on the IIT Bombay Careers page. Kindly go on to the website, that is at www.iitb.ac.in. Delhi Jal Board, Government of NCT of Delhi, invites applications from eligible candidates for filling up 8 posts of Deputy Director in pay level 11 and 9 posts of Administrative Officer, Zonal Revenue Officer in pay level 9 on deputation basis. The appointments will initially be for 1 year, extendable up to maximum of 3 years and 1 year at a time, or until the posts are filled on regular basis through DSSSB, whichever is earlier. The last date for submission of applications is 6th September 2026. Eligible candidates should submit their applications as prescribed in the vacancy notice. For details, eligibility criteria, terms and conditions, and application procedure, kindly visit www.delhijalboard.nic.in. BRIC National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad, an autonomous institute under the aegis of the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India, invites applications from suitably qualified, dynamic, result-oriented and dedicated Indian citizens for the post of Scientist B1. The post is reserved for one OBC. The post carries pay level 10 as per the 7 CPC. And will be filled through direct recruitment against a lien vacancy likely to be continued. The upper age limit is 35 years. Applications are invited in the areas of animal nutrition, animal precision gene editing, and veterinary gynecology and triogenology, with expertise in assisted reproductive technology such as AI, IVF, ICSI, OPU, and ET. The last date for submission of applications is 11 September 2026. For detailed eligibility criteria, terms and conditions, and application procedure, candidates should refer to the website at www.niab.res.in. CSIR, Central Scientific Instruments Organization, Chandigarh, a premier institute under the Council of Scientific and Industrial Research, invites online applications for the post of a security officer, Group B, one unreserved, receptionist, Group B, one post unreserved, and driver, Group C, 4 posts are available, 3 unreserved, 1 OBC, including 1 reserved for ex-servicemen. The posts carry pay level 7, level 6 and level 2 respectively, with upper age limits of 35, 28 and 27 years. Online application closes on 14 September 2026. For detailed eligibility, age relaxations, terms and conditions and application instructions, kindly visit the website at www.csio.res.in. I repeat the website, it is www.csio.res.in.
0: And now we have the employment news in Hindi.
2: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार। रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार आमंत्रित कर रहा है कार्यालय अधीक्षक अराजपत्रित लेवल 6 के एक पद के लिए आवेदन। पात्रता शर्तों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं दिनांक 29 अगस्त से 4 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। इसके अतिरिक्त इस वेबसाइट पर भी ये जानकारी उपलब्ध है www.agricoop.nic.in। CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आमंत्रित कर रहा है इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। कनिष्ठ आशुलिपिक, जूनियर सचिवालय सहायक और जूनियर हिंदी अनुवादक। विस्तृत विज्ञापन के लिए आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट www.neist.res.in। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। सहायक प्रबंधक सिविल तथा सहायक प्रबंधक सिविल E2, इनमें से एक पद अनारक्षित है। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र, पदों के संबंध में विवरण, चयन प्रक्रिया, संशोधन आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की वेबसाइट www.ncrtc.in। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की ओर से NIII कोलकाता और दिल्ली में अनुबंध आधार पर इन पदों को भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित हैं। पद हैं सहायक प्रोफेसर केस टेकिंग और रेपर्टरी, सहायक प्रोफेसर तथा कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर की जानी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की वेबसाइट nih.ayush.gov.in। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता का एक पद रिक्त है। इसे भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन वॉक इन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान की वेबसाइट www.cswcrtiweb.org। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत श्री गुरु गोविंद सिंह वाणिज्य महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभागों के नाम हैं वाणिज्य, जिसमें 3 रिक्तियां उपलब्ध हैं, पंजाबी भाषा 1 रिक्ति, गणित 1 और पर्यावरण अध्ययन EVS 1 रिक्ति। इन पदों के संबंध में शैक्षिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sggscc.ac.in। आवेदन के लिए ये वेब लिंक भी देख सकते हैं rec.uod.ac.in। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के पात्र अधिकारियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के एक स्वीकृत पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद के लिए वेतन, अपेक्षित अर्हताएं, अन्य पात्रता मानदंड तथा आवेदन पत्र आप देख सकते हैं अकादमी की इस वेबसाइट पर www.svpnpa.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं।
3: हाय हेलो, मीरु विंटुन्नारु मिट्स कम्युनिटी रेडियो 90.8। मी भविष्यत्तुकु बलमैन अडुगु मदनपल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मिट्स डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। అత్యుత్తమ బోధన, ఆధునిక ల్యాబ్స్, విశాలమైన క్యాంపస్తో పాటు వేలాది ప్లేస్మెంట్స్, ప్రముఖ కంపెనీల్లో మీకు అవకాశాలు. ఇంజనీరింగ్, మేనేజ్మెంట్, కంప్యూటర్ సైన్స్ మరియు మరెన్నో కోర్సులు. పిహెచ్డి పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉత్తమ విద్య, స్కాలర్షిప్స్, అంతర్జాతీయ అవకాశాలతో మీ కెరీర్కు కొత్త దిశ. ఇప్పుడే మిట్స్ డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీలో చేరండి. మీ విజయం ఇక్కడే ప్రారంభం. మీ ప్రతిభను వెలికితీసే ఉత్తమ వేదిక మిట్స్ డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీ. పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి. ఫోన్ నెంబర్లు 7330803555, ఇంకో నెంబర్ 7330052555, అలాగే admissions@mits.ac.in మెయిల్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. వినండి, వినిపించండి, వింటూనే ఉండండి, ఆనందించండి. మిట్స్ కమ్యూనిటీ రేడియో 90.8.

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: Indian Institute of Technology, Bombay, has invited online applications for several positions. The vacancies include Technical Officer, Scale 1, Sports Officer, Scale 1, Student Counselor on Contract, Technical Superintendent, Junior Staff Nurse, Library Information Superintendent, Junior Mechanic and Junior Trained Graduate Teacher, Hindi and Music. The posts carry ranging from pay level 3 to pay level 10, depending on the position. And the number of vacancies varies by post and includes reservations for SC, ST, OBC, NCL, EWS and UR categories. The last date for submission of online applications is 4th September 2026. Candidates should check the prescribed educational qualifications, experience, age limits and other eligibility conditions before applying. Detailed information and the online applications are available on the IIT Bombay Careers page. Kindly go on to the website, that is at www.iitb.ac.in. Delhi Jal Board, Government of NCT of Delhi, invites applications from eligible candidates for filling up 8 posts of Deputy Director in pay level 11 and 9 posts of Administrative Officer, Zonal Revenue Officer in pay level 9 on deputation basis. The appointments will initially be for 1 year, extendable up to maximum of 3 years and 1 year at a time, or until the posts are filled on regular basis through DSSSB, whichever is earlier. The last date for submission of applications is 6th September 2026. Eligible candidates should submit their applications as prescribed in the vacancy notice. For details, eligibility criteria, terms and conditions, and application procedure, kindly visit www.delhijalbord.nic.in. BRIC National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad, an autonomous institute under the aegis of the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India, invites applications from suitably qualified, dynamic, result-oriented and dedicated Indian citizens for the post of Scientist B1. The post is reserved for one OBC. The post carries pay level 10 as per the 7 CPC. And will be filled through direct recruitment against salient vacancy likely to be continued. The upper age limit is 35 years. Applications are invited in the areas of animal nutrition, animal precision gene editing, and veterinary gynecology and triogenology, with expertise in assisted reproductive technology such as AI, IVF, ICSI, OPU, and ET. The last date for submission of applications is 11 September 2026. For detailed eligibility criteria, terms and conditions, and application procedure, candidates should refer to the website at www.niab.res.in. CSIR, Central Scientific Instruments Organization, Chandigarh, a premier institute under the Council of Scientific and Industrial Research, invites online applications for the post of a security officer, Group B, one unreserved, receptionist, Group B, one post unreserved, and driver, Group C, 4 posts are available, 3 unreserved, 1 OBC, including 1 reserved for ex-servicemen. The posts carry pay level 7, level 6 and level 2 respectively, with upper age limits of 35, 28 and 27 years. Online application closes on 14 September 2026. For detailed eligibility, age relaxations, terms and conditions and application instructions, kindly visit the website at www.csio.res.in. I repeat the website, it is www.csio.res.in.
0: And now we have the employment news in Hindi.
2: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार. नमस्कार। रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार आमंत्रित कर रहा है कार्यालय अधीक्षक अराजपत्रित लेवल 6 के एक पद के लिए आवेदन। पात्रता शर्तों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं दिनांक 29 अगस्त से 4 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। इसके अतिरिक्त इस वेबसाइट पर भी ये जानकारी उपलब्ध है www.agricoop.nic.in। CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आमंत्रित कर रहा है इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। कनिष्ठ आशुलिपिक, जूनियर सचिवालय सहायक और जूनियर हिंदी अनुवादक। विस्तृत विज्ञापन के लिए आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट www.neist.res.in। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। सहायक प्रबंधक सिविल तथा सहायक प्रबंधक सिविल E2, इनमें से एक पद अनारक्षित है। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र, पदों के संबंध में विवरण, चयन प्रक्रिया, संशोधन आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की वेबसाइट www.ncrtc.in। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की ओर से NIII कोलकाता और दिल्ली में अनुबंध आधार पर इन पदों को भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित हैं। पद हैं सहायक प्रोफेसर केस टेकिंग और रेपर्टरी, सहायक प्रोफेसर तथा कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर की जानी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की वेबसाइट nih.ayush.gov.in। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता का एक पद रिक्त है। इसे भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन वॉक इन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान की वेबसाइट www.cswcrtiweb.org। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत श्री गुरु गोविंद सिंह वाणिज्य महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभागों के नाम हैं वाणिज्य, जिसमें 3 रिक्तियां उपलब्ध हैं, पंजाबी भाषा 1 रिक्ति, गणित 1 और पर्यावरण अध्ययन EVS 1 रिक्ति। इन पदों के संबंध में शैक्षिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sggscc.ac.in। आवेदन के लिए ये वेब लिंक भी देख सकते हैं rec.uod.ac.in। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के पात्र अधिकारियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के एक स्वीकृत पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद के लिए वेतन, अपेक्षित अर्हताएं, अन्य पात्रता मानदंड तथा आवेदन पत्र आप देख सकते हैं अकादमी की इस वेबसाइट पर www.svpnpa.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं।
3: हाय हेलो, मीर विंटुनारु मिट्स कम्युनिटी रेडियो 90.8। मी भविष्यत्तुकु बलमैन अडुगु मदनपल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मिट्स डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। అత్యుత్తమ బోధన, ఆధునిక ల్యాబ్స్, విశాలమైన క్యాంపస్తో పాటు వేలాది ప్లేస్మెంట్స్, ప్రముఖ కంపెనీల్లో మీకు అవకాశాలు. ఇంజనీరింగ్, మేనేజ్మెంట్, కంప్యూటర్ సైన్స్ మరియు మరెన్నో కోర్సులు. పిహెచ్డి పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉత్తమ విద్య, స్కాలర్షిప్స్, అంతర్జాతీయ అవకాశాలతో మీ కెరీర్కు కొత్త దిశ. ఇప్పుడే మిట్స్ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీలో చేరండి. మీ విజయం ఇక్కడే ప్రారంభం. మీ ప్రతిభను వెలికితీసే ఉత్తమ వేదిక మిట్స్ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ. పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి. ఫోన్ నెంబర్లు 7330803555, ఇంకో నెంబర్ 7330052555, అలాగే admissions@mits.ac.in మెయిల్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. వినండి, వినిపించండి, వింటూనే ఉండండి, ఆనందించండి. మిట్స్ కమ్యూనిటీ రేడియో 90.8.

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात के एक और एपिसोड के जरिए हम एक साथ जुड़ रहे हैं। ये 2022 की पहली मन की बात है। आज हम फिर ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे देश और देशवासियों की सकारात्मक प्रेरणाओं और सामूहिक प्रयासों से जुड़ी होती है। आज हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दिवस भी मनाया। दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी, उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया है। एक परिवर्तन जो आपने देखा होगा, अब गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी तक यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस बात का जिस प्रकार से देश ने स्वागत किया, देश के हर कोने से आनंद की जो लहर उठी, हर देशवासी ने जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट की, उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश इन प्रयासों के जरिए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्प्रतिष्ठित कर रहा है। हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। इस भावुक अवसर पर कितने ही देशवासियों और शहीद परिवारों की आंखों में आंसू थे। नेशनल वॉर मेमोरियल में आजादी के बाद से शहीद हुए देश के सभी जाबाजों के नाम अंकित किए गए हैं। मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने पत्र लिखकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रज्वलित हो रही अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। सच में अमर जवान ज्योति की ही तरह हमारे शहीद, उनकी प्रेरणा और उनके योगदान भी अमर है। मैं आप सभी से कहूंगा, जब भी अवसर मिले नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर जाएं, अपने परिवार और बच्चों को भी जरूर ले जाएं। यहां आपको एक अलग ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव होगा। साथियों, अमृत महोत्सव के इन आयोजनों के बीच देश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए। एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये पुरस्कार उन बच्चों को मिले जिन्होंने छोटी सी उम्र में साहसिक और प्रेरणादायी काम किए हैं। हम सबको अपने घरों में इन बच्चों के बारे में जरूर बताना चाहिए। इनसे हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और उनके भीतर देश का नाम रोशन करने का उत्साह जगेगा। देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहां रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया है। इसी तरह मणिपुर की 77 साल की लोरेम्बम बिनो देवी दशकों से मणिपुर की लीबा टेक्सटाइल आर्ट का संरक्षण कर रही है। उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह को बैगा आदिवासी नृत्य की कला को पहचान दिलाने के लिए पद्म सम्मान मिला है। पद्म सम्मान पाने वाले एक और व्यक्ति है, श्रीमान अमाई महालिंगा नाइक। एक किसान है और कर्नाटका के रहने वाले हैं। इन्हें कुछ लोग टनल मैन भी कहते हैं। उन्होंने खेती में ऐसे ऐसे इनोवेशन किए हैं जिन्हें देखकर
कोई भी हैरान रह जाए, इनके प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को हो रहा है। ऐसे और भी कई अनसंग हीरोज हैं जिन्हें देश ने उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। आप जरूर इनके बारे में जानने की कोशिश करिए, इनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं, कई सुझाव भी देते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। मैंने मन की बात के श्रोताओं के लिए कुछ पोस्टकार्ड छांटे हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे यह एक असम के गुवाहाटी से रिद्धिमा स्वर्गीयारी का पोस्टकार्ड है। रिद्धिमा क्लास 7th की स्टूडेंट है और उन्होंने लिखा है कि वो आजादी के 100वें साल में एक ऐसा भारत देखना चाहती हैं जो दुनिया का सबसे स्वच्छ देश हो, आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त हो, 100% साक्षर देशों में शामिल हो, 0 एक्सीडेंट कंट्री हो और सस्टेनेबल तकनीक से फूड सिक्योरिटी में सक्षम हो। रिद्धिमा, हमारी बेटियां जो सोचती हैं, जो सपने देश के लिए देखती हैं, वो तो पूरे होते ही हैं जब सबके प्रयास जुड़ेंगे। आपकी युवा पीढ़ी इसे लक्ष्य बनाकर काम करेगी तो आप भारत को जैसा बनाना चाहती हैं वैसे जरूर होगा। एक पोस्टकार्ड मुझे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नव्या वर्मा का भी मिला है। नव्या ने लिखा है कि उनका सपना 2047 में ऐसे भारत का है जहां सभी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, जहां किसान समृद्ध हो और भ्रष्टाचार न हो। नव्या, देश के लिए आपका सपना बहुत सराहनीय है। इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है, उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार फटक भी नहीं सकता। साथियों, एक और पोस्टकार्ड मेरे सामने है चेन्नई से मोहम्मद इब्राहिम का। इब्राहिम 2047 में भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चंद्रमा पर भारत का अपना रिसर्च बेस हो और मंगल पर भारत मानव आबादी को बसाने का काम शुरू करे। साथ ही इब्राहिम पृथ्वी को भी प्रदूषण से मुक्त करने में भारत की बड़ी भूमिका देखते हैं। इब्राहिम, जिस देश के पास आप जैसे नौजवान हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों, मेरे सामने एक और पत्र है। मध्य प्रदेश के रायसेन में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास 10 की छात्रा भावना का। सबसे पहले तो मैं भावना को कहूंगा कि आपने जिस तरह अपने पोस्टकार्ड को तिरंगे से सजाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। भावना ने क्रांतिकारी शिरीष कुमार के बारे में लिखा है। साथियों, मुझे गोवा से लॉरेंसियो परेरा का पोस्टकार्ड भी मिला है। ये क्लास 12 की स्टूडेंट है।
इनके पत्र का भी विषय है आजादी के अनसंग हीरोज। मैं इसका हिंदी भावार्थ आपको बता रहा हूं। इन्होंने लिखा है, भिकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रही सबसे बहादुर महिलाओं में से एक थी। उन्होंने बेटियों को सशक्त करने के लिए देश विदेश में बहुत से अभियान चलाए, अनेक प्रदर्शनियां लगाई। निश्चित तौर पर भिकाजी कामा स्वाधीनता आंदोलन की सबसे जाबाज महिलाओं में से एक थी। 1907 में उन्होंने जर्मनी में तिरंगा फहराया था। इस तिरंगे को डिजाइन करने में जिस व्यक्ति ने उनका साथ दिया था वो थे श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का निधन 1930 में जेनेवा में हुआ था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि

भारत की आजादी के बाद उनकी अस्थियां भारत लाई जाए। वैसे तो 1947 में आजादी के दूसरे ही दिन उनकी अस्थियां भारत वापस लानी चाहिए थी, लेकिन ये काम नहीं हुआ। शायद परमात्मा की इच्छा होगी ये काम मैं करूं, और इस काम का सौभाग्य भी मुझे ही मिला। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वर्ष 2003 में उनकी अस्थियां भारत लाई गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की स्मृति में उनके जन्म स्थान कच्छ के मांडवी में एक स्मारक का निर्माण भी हुआ है। साथियों, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह केवल हमारे देश में ही नहीं है, मुझे भारत के मित्र देश क्रोएशिया से भी 75 पोस्टकार्ड मिले हैं। क्रोएशिया के जागरेब में स्कूल ऑफ एप्लाइड आर्ट्स एंड डिजाइन के स्टूडेंट्स, उन्होंने ये 75 कार्ड्स भारत के लोगों के लिए भेजे हैं और अमृत महोत्सव की बधाई दी है। मैं आप सभी देशवासियों की तरफ से क्रोएशिया और वहां के लोगों को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत शिक्षा और ज्ञान की तपोभूमि रहा है। हमने शिक्षा को किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन के एक समग्र अनुभव के तौर पर देखा है। हमारे देश की महान विभूतियों का भी शिक्षा से गहरा नाता रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, वहीं महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। गुजरात के आणंद में एक बहुत ही प्यारी जगह है, वल्लभ विद्यानगर। सरदार पटेल के आग्रह पर उनके दो सहयोगियों भाई काका और भीखा भाई ने वहां युवाओं के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की। इसी तरह पश्चिम बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। महाराजा गायकवाड़ भी शिक्षा के प्रबल समर्थकों में से एक थे। उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों का निर्माण करवाया और डॉक्टर आम्बेडकर और श्री अरविंदो समेत अनेक विभूतियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही महानुभावों की सूची में एक नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का भी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने एक टेक्निकल स्कूल की स्थापना के लिए अपना घर ही सौंप दिया था। उन्होंने अलीगढ़ और मथुरा में शिक्षा केंद्रों के निर्माण के लिए खूब आर्थिक मदद की। कुछ समय पहले मुझे अलीगढ़ में उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे खुशी है कि शिक्षा के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने की वही जीवंत भावना भारत में आज भी कायम है। क्या आप जानते हैं इस भावना की सबसे सुंदर बात क्या है? वो ये है कि शिक्षा को लेकर ये जागरूकता समाज में हर स्तर पर दिख रही है। तमिलनाडु के त्रिपुर जिले के उदुम लपेट ब्लॉक में रहने वाली तायम्मल जी का उदाहरण तो बहुत ही प्रेरणादायी है। तायम्मल जी के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। बरसों से इनका परिवार नारियल पानी बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा है। आर्थिक स्थिति भले अच्छी ना हो, लेकिन तायम्मल जी ने अपने बेटे बेटी को पढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उनके बच्चे चिन्वीरमपट्टी पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। ऐसे ही एक दिन स्कूल में अभिभावकों के साथ मीटिंग में ये बात उठी कि कक्षाओं और स्कूल की स्थिति को सुधारा जाए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। तायम्मल जी भी उस मीटिंग में थी, उन्होंने सब कुछ सुना। इसी बैठक में फिर चर्चा इन कामों के लिए पैसे की कमी पर आकर टिक गई। इसके बाद तायम्मल जी ने जो किया उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। जिन तायम्मल जी ने नारियल पानी बेच बेच कर कुछ पूंजी जमा की थी, उन्होंने 1,00,000 रुपये स्कूल के लिए दान कर दिए। वाकई ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, सेवा भाव चाहिए। तायम्मल जी का कहना

0: है, अभी जो स्कूल है उसमें 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। अब जब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाएगा तो यहां हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई होने लगेगी। हमारे देश में शिक्षा को लेकर यह वही भावना है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। मुझे आईआईटी बीएचयू के एक एल्यूमिनस के इस तरह के दान के बारे में भी पता चला है। बीएचयू के पूर्व छात्र जय चौधरी जी ने आईआईटी बीएचयू फाउंडेशन को $1 मिलियन यानी करीब करीब 7.5 करोड़ रुपया डोनेट किए। साथियों, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह के प्रयास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर हमारी अलग अलग आईआईटीज में निरंतर देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के प्रेरक उदाहरण की कमी नहीं है। इस तरह के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए पिछले साल सितंबर से देश में विद्यांजलि अभियान की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य अलग अलग संगठनों, सीएसआर और निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश भर के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। विद्यांजलि सामुदायिक भागीदारी और ओनरशिप की भावना को आगे बढ़ा रही है। अपने स्कूल कॉलेज से निरंतर जुड़े रहना, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान देना, यह एक ऐसी बात है जिसका संतोष और आनंद अनुभव लेकर ही पता चलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रकृति से प्रेम और हर जीव के लिए करुणा, यह हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी है। हमारे इन्हीं संस्कारों की झलक अभी हाल ही में तब दिखी जब मध्य प्रदेश के पैंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने दुनिया को अलविदा कर दिया। इस बाघिन को लोग कॉलर वाली बाघिन कहते थे। वन विभाग ने इसे T15 नाम दिया था। इस बाघिन की मृत्यु ने लोगों को इतना भावुक कर दिया जैसे उनका कोई अपना दुनिया छोड़ गया हो। लोगों ने बकायदा उसका अंतिम संस्कार किया, उसे पूरे सम्मान और स्नेह के साथ विदाई दी। आपने भी ये तस्वीरें सोशल मीडिया में जरूर देखी होगी। पूरी दुनिया में प्रकृति और जीवों के लिए हम भारतीयों के इस प्यार की खूब सराहना हुई। कॉलर वाली बाघिन ने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म दिया और 25 को पाल पोसकर बड़ा भी बनाया। हमने T15 के इस जीवन को भी सेलिब्रेट किया और जब उसने दुनिया छोड़ी तो उसे भावुक विदाई भी दी। यही तो भारत के लोगों की खूबी है। हम हर चेतन जीव से प्रेम का संबंध बना लेते हैं। ऐसा ही एक दृश्य हमें इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखने को मिला। इस परेड में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आखिरी परेड में हिस्सा लिया। घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपति भवन आया था और हर बार गणतंत्र दिवस पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था। जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता था तब भी वह अपनी यह भूमिका निभाता था। इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराट को सेना प्रमुख द्वारा कोर्स कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया। विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई। मेरे प्यारे देशवासियों, जब एकनिष्ठ प्रयास होता है, नेक नियत से काम होता है तो उसके परिणाम भी मिलते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण सामने आया है असम से। असम का नाम लेते ही वहां के चाय बागान, और बहुत सारे नेशनल पार्क का ख्याल आता है। साथ ही एक सिंग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न राइनो की तस्वीर भी हमारे मन में उभरती है। आप सभी जानते हैं कि एक सिंग वाला गैंडा हमेशा से असमिया संस्कृति का हिस्सा रहा है। भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का ये गीत हर एक कान में गूंजता होगा।
1: काजीरंगार सिरो खेउजी पोरीबे हस्ती बैग रे पा एक खड़गो

साथियों, इस गीत का जो अर्थ है वो बहुत सुसंगत है। इस गीत में कहा गया है, काजीरंगा का हरा भरा परिवेश, हाथी और बाघ का निवास, एक सिंग वाले गैंडे को पृथ्वी देखे, पक्षियों का मधुर कलरव सुने, असम की विश्व प्रसिद्ध हथकरघा पर बुनी गई मुंगा और एरी की पोशाकों में भी गैंडों की आकृति दिखाई देती है। असम की संस्कृति में जिस गैंडे की इतनी बड़ी महिमा है, उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2013 में 37 और 2014 में 32 गैंडों को तस्करों ने मार डाला था। इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले 7 वर्षों में असम सरकार के विशेष प्रयासों से गैंडों के शिकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के मौके पर तस्करों से जब्त किए गए 2400 से ज्यादा सिंगों को जला दिया गया था। यह तस्करों के लिए एक सख्त संदेश था। ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है कि अब असम में गैंडों के शिकार में लगातार कमी आ रही है। जहां 2013 में 37 गैंडे मारे गए थे, वहीं 2020 में 2 और 2021 में सिर्फ 1 गैंडे के शिकार का मामला सामने आया है। मैं गैंडों को बचाने के लिए असम के लोगों के संकल्प की सराहना करता हूं। साथियों, भारतीय संस्कृति के विविध रंगों और आध्यात्मिक शक्ति ने हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय संस्कृति अमेरिका, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, पश्चिम यूरोप और जापान में बहुत ही लोकप्रिय है, तो ये बात आपको बहुत सामान्य लगेगी, आपको कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये कहूं कि भारतीय संस्कृति का लेटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ा आकर्षण है, तो आप एक बार जरूर सोच में पड़ जाएंगे। मैक्सिको में खादी को बढ़ावा देने की बात हो या फिर ब्राजील में भारतीय परंपराओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास, मन की बात में हम इन विषयों पर पहले चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको अर्जेंटीना में फहरा रहे भारतीय संस्कृति के परचम के बारे में बताऊंगा। अर्जेंटीना में हमारी संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है। 2018 में मैंने अर्जेंटीना की अपनी यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम में योगा फॉर पीस में हिस्सा लिया था। यहाँ अर्जेंटीना में एक संस्था है, हस्तिनापुर फाउंडेशन। आपको सुनकर के आश्चर्य होता है ना, कहाँ अर्जेंटीना और वहां भी हस्तिनापुर फाउंडेशन। यह फाउंडेशन अर्जेंटीना में भारतीय वैदिक परंपराओं के प्रसार में जुटा है। इसकी स्थापना 40 साल पहले एक मैडम प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट ने की थी। आज प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट 90 वर्ष की होने जा रही है। भारत के साथ उनका जुड़ाव कैसे हुआ, ये भी बहुत दिलचस्प है। जब वो 18 साल की थी, तब पहली बार भारतीय संस्कृति की शक्ति से उनका परिचय हुआ। उन्होंने भारत में काफी समय भी बिताया, भगवद गीता और उपनिषदों के बारे में गहराई से जाना। आज हस्तिनापुर फाउंडेशन के

ओजम निरंजॉय सिंह ने एक मिनट में 109 पुशअप्स का रिकॉर्ड बनाया है। निरंजॉय सिंह के लिए रिकॉर्ड तोड़ना कोई बात नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक मिनट में एक हाथ से सबसे ज्यादा नकल पुशअप्स का रिकॉर्ड बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि निरंजॉय सिंह से आप प्रेरित होंगे और फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, आज मैं आपके साथ लद्दाख की एक ऐसी जानकारी साझा करना चाहता हूं जिसके बारे में जानकर आपको जरूर गर्व होगा। लद्दाख को जल्द ही एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। यह स्टेडियम 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बन रहा है और इसका निर्माण जल्द पूरा होने वाला है। लद्दाख का यह सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा जहां 30,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे। लद्दाख के इस आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम में 8 लेन वाला एक सिंथेटिक ट्रैक भी होगा। इसके अलावा यहां 1,000 बेड वाले एक हॉस्टल की सुविधा भी होगी। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि इस स्टेडियम को फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने भी सर्टिफाई किया है। जब भी स्पोर्ट्स का ऐसा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो यह देश के युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आता है। साथ साथ जहां ये व्यवस्था होती है वहां भी देश भर के लोगों का आना जाना होता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अनेक अवसर पैदा होते हैं। इस स्टेडियम का भी लाभ लद्दाख के हमारे अनेकों युवाओं को होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। एक विषय और है जो इस समय सबके मन में है और वो है कोरोना का। कोरोना की नई वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं। इससे न केवल हमारे युवाओं की रक्षा होगी बल्कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी। एक और अच्छी बात यह भी है कि 20 दिन के भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। अपने देश की वैक्सीन पर देशवासियों का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अब तो कोरोना संक्रमण के केस भी कम होने शुरू हुए हैं। ये बहुत सकारात्मक संकेत है। लोग सुरक्षित रहें, देश की आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बनी रहे, हर देशवासी की यही कामना है। और आप तो जानते ही हैं, मन की बात में कुछ बातें मैं कहे बिना रह ही नहीं सकता हूं। जैसे स्वच्छता अभियान को हमें भूलना नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को हमें और तेजी लानी जरूरी है, वोकल फॉर लोकल का मंत्र ये हमारी जिम्मेवारी है, हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जी जान से जुटे रहना है। हम सबके प्रयास से ही देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आपने अभी अभी सुना प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 50वीं कड़ी को। और 50वीं कड़ी